ना कदवानी वाला ये तो टांग वाला ओए इलका इलका ये तो माखो को खो खो इंदो बस के यारा लेकिन और बस तुम रचेस कहीं आजमा का ये खोरू सम लगे रजे जारू कहीं ये रखा प्रीता से प्रीता लेस बजुन बाद बिचारू के ता दुनिया चाने दे शिलकड़ी राजा प्रोग्राम ला शाबा शाबा शाबा मैसेज रो लेगा पर सिफर द्वापेरी द्री पिंज सलूर द्री पिंज यो पिंज बांधे सिफर द्वापेरी द्री पिंज सलूर द्री पिंज यो पिंज यानी जीरो द्वापेरी तीन पंज ब्या चार तीन पंज ब्या तीन पंज ब्या एक पंज सिपर द्वापेरी तीन ब्या पंज ब्या चार तीन पंज ब्या तीन पंज और ब्या एक पंज ठीक है कना शाबा शाबा वाने वाला टांग वाला दा मैसेज न कम दी गोरे मैसेज न मिदा दी उसरा वाला वल दा कम दी दा लग दी गोरे दा जनमन हम शाबा डीर मैसेज न रोली गई अलक दवानी वाला जमुन का खोई दी यार चर तो रुकी दी ओरिशा वापा दस कारू का कहना तो कर सदी वाना के और ये कूर पकूरू कर सदी मुंगे दाखो इन चर तो रुकी दी और पटांग की चिकम दे कना पटांग की बजा अजमंग गुलाली खोर दागी तब हुआ यू और जमुंग नरगस खोर दा ददी दोन दो बल सर जोड़े डेरा पखा मलगरतिया दा जिसे दी दान वो योजे हो कर दी ठीक दे कना शिदवानी वाले दाखो इन देरा पासी और बिल्कुल जी जांच तेरे प्रोग्राम की रात आज़ा की لکه سکن جوسان دی خو سره دغه موبایل په لاس کې نیولې دی او میسج نه کوي یاره لکه و سلیم کټی خیل سی به زیتې دی کنه بدا ټول دی ابراهیم بای کارونه دی کنه بدا پروگرام ته خان دی او چکم دی کنه او کان نه کوي او باباز باما

जी बिल्कुल बैकग्राउंड के दगा खुशा शांत सांदरा यानी देसरा सरा कना चावेले दा कंदी कुचे और देसरा सरा बिल्कुल गयूर वजीर पा उस माने टेक्स्ट कना दा बखवे सरा एंजॉय को बैकग्राउंड की जी और मखबला डेरा खुशा दा शाम होते तेरे मजारो कवि से खरो सरा वोर वे जी।

0: बहाने पे चक्कर लगाएं,
1: ठीक है,
0: और उस पे फिर उसकी हिस्ट्री देख के तो उसका इलाज है।
1: चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, तो आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। कॉल के लिए SMS के लिए 0319-55-23-404 पर। सो बिल्कुल हकीम साहब, ये जो नाक की एलर्जी का मसला है इसका इलाज इंशाल्लाह मौजूद है अलशिफा।
0: इसका बिल्कुल देसी में इसका इलाज बेहतरीन है और अलशिफा दवाखाने पे भी इसके नुस्खे हैं कि जो, और यहाँ भी चंद पेशेंट मेरे पास आए हैं जो एलर्जी से रिलेटेड थे,
1: ठीक है,
0: यानी नाक की भी एलर्जी भी थी, कुछ उसमें रेशे बलगम के, कुछ की नाक में वर्म सोजिश,
1: ठीक है।
0: तो ये नुस्खे जो हैं वो आजमूदा हैं और उसका काफी बार तजर्बा भी किया जा चुका है, तो मरीज उससे रिलीफ महसूस करता है, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू रखे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी फायदे उससे
1: ले सकते हैं। बिल्कुल चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई? जी क्या पूछना चाहते हुए हकीम साहब दे कोलो? जी जी पूछो, क्या पूछना चाहते हुए? पिन्नी दर्द थी थोड़े। हेलो, ठीक है ठीक है। मेरे भिरा उम्र कितनी है पाई तुम्हारी?
2: तकरीबन कम अज कम
1: कितनी हो सी भाई? 33 साल हो सी। ठीक है मेरे भिरा, रेडियो सुन दे रहो, हकीम साहब ने इसके बारे में मशवरा करने हैं। अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब क्या मशवरा?
0: अब इनके पैरों की तलियों में दर्दें होती हैं, जलन भी होती है, तो उसमें दो तीन सूरतें हैं। एक तो इनको अपना अगर आप ब्लड शुगर भी चेक करा लेना चाहिए कि शुगर लेवल क्या है, दूसरा अपने मैदे की तजाबियत पे भी वो देखना चाहिए,
1: ठीक है,
0: और तीसरा फिर असाबी कमजोरी की तरफ भी देखना चाहिए, कहीं पट्ठों में थोड़ी वीकनेस तो नहीं आ रही है,
1: ठीक है,
0: इस वजह से पैरों में जलन और सोजिश और दर्द,
1: ठीक है,
0: तो इस चीज को सामने रख के और फिर ही नुस्खा तजवीज हो सकता है। इसके लिए कोई टोटके जो है वो शायद यहाँ काम ना।
1: ये वजह क्या हो सकती है?
0: वजह इसकी कुछ भी हो सकती है। देखिए इनके मैदे में तजाबियत भी हो सकती है, इनके असाब भी कमजोर हो सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और दूसरा हो सकता है बाद दफा हम चेक ही नहीं करवाते कि शुगर के, जब तक चेक नहीं करवाएंगे पता कैसे चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी ज्यादा पेशाब आएगा तो फिर वो शुगर की निशानी है, लेकिन बाद शुगर के मरीज को पेशाब ज्यादा आता ही नहीं है,
1: ऐसी बात,
0: और बाद को आता भी है तो उनको शुगर इतनी नहीं होती, तो ये इस सिम्टम्स पे नहीं। आप अपना चेकअप करवाएं, अपना ब्लड चेक करवाएं या अपना यूरिन करवाएं और उसके बाद क्लियर करें कि अगर आपको वो डायबिटीज डिग्नोज होती है तो फिर उसके मुताबिक उसका इलाज।
1: चले ठीक है। सो बिल्कुल प्यारे भाई जेडे तुसा गल करें पे वे हताले दे कोलो, तो बेहतर ए है पिया तुसा अलशिफा दवाखाना दे चक्कर लो। टांग तोरे को परे नहीं जी, हताले को तुसा जी में टांग दो आसो, टांग की शवाल मार्केट का पता करे सो जी, मेन ट्रैफिक चौक को थोड़ा जे को आसो तो शवाल मार्केट सारा को आखिर ते हकीम साहब की दुकान है पई, ते हकीम साहब बने फजर ले 8 बजे को चाह के शामी 4 बजे तक अपने क्लिनिक मौजूद होने अलशिफा दवाखाना दे विच। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट टांक सिटी जे विच जे रहे हकीम साहब बने मौजूद होने। मजीद तफसीलात मालूमात दे वास्ते ते प्रोग्राम दे बाद अगर हकीम साहब नाल राबता करना चाहो, अपना एडवांस नंबर बुक करना चाहो, तो बिल्कुल 0319-55-23-404 तो हकीम साहब में राता कर सकते हुए। सो बिल्कुल हकीम साहब एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम अंस भाई, आपको और हकीम साहब दोनों को सलाम।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम। कहती हैं कि मुझे साइनोस का मसला है।
0: ठीक
1: जी हकीम साहब, साइनोस ये कौन सी बीमारी है इसके बारे में जरा बताइएगा।
0: देखें अब इन्होंने को टेस्ट वगैरह तो कराया ही होगा, जाहिर
1: है मैसेज आया है साहब एक
0: जी
1: हाँ, सो ये साइनोस के बारे में बता रहे थे, सो ये कॉलर हैं, इनको सुन लेते हैं फिर आप इसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई?
3: मैं अमानत अली कर
1: जी। लला अमानत क्या पूछना चाहते हुए हकीम साहब देखो
3: सारे वजन में मशवरा
4: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
6: You are listening Radio Amat Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.

0: ओके सी बल कलर गुरु सुख दे रसा दो कम से नदी आओ उस वहीपति प्रोग्राम से अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम मेजबान साहब चला गया जी सर बिल्कुल शेव सी मलाजिम से शायद रणवाला ना से

Dera Manazi, Zonera, Mananahazi, Arvalishi Suribai, Vulgati, May, No Tension, Beauty Cream, No Tension, Face Wash or No Tension Shampoo, Use Karti, Who Airs Me, Mekhana, Zidani, Franta, Koki Hore. Rojana Ghilisha Kasamdi Umish Pamisha Bani Dasi Grone Shepas Ma Pesha Khesha Khinwakar Na Pesha Khesha Sha. Thank you Dina Manasi or Balwai Zanab Bhai Sasha Garakon Bihan Mere Saath Nahi Balki Main Bihan Ke Saath Products Use Kartu Main Jab Se Wazire Sansi Aaye Hoon Koi Products Nahi Liye Hain Bihan Mujhse पिछले आई थी उसने सब प्रोडक्ट्स ली थी जब मैं आ गई तो मैंने कहा कि हम दोनों बहने ही मेरे चीज तुम्हारे और आपकी हमारी साथ यूज कर लिया करेंगे तुम मान गए सिवा हम गुल समा खुर्स दे बैठगी कर दे हंसी

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Welcome to all the sweet listeners of Radio Pegham 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Da. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज किसकी है जनाब? ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत और तंदुरुस्ती की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की।
1: देखा खुदा को हमने बेपरदा उसी की जात में।
0: जी जनाब, एक नए दिन के साथ, एक नई तारीख के साथ जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान के स्टूडियो, केसन स्टूडियो से हमारा सलाम कबूल कीजिएगा। मुझे कहते हैं खलील ताबे शावान और आज दिन है मंगल का। जी जनाब, मंगल का दिन है और तारीख कौन सी है? जी जनाब, 6 अक्टूबर 2026 और 2100। जी सामने ग्राम, कैसे आप सभी लोग जनाब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल जी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट एकदम मजे में, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, चहचहाते हुए जनाब अपने एक खूबसूरत और अहम दिन का जो है इख्तिताम के करीब होंगे। क्योंकि जनाब ये वक्त जो होता है वो हमारे दिन का आखिरी वक्त होता है कि जिसमें हम आपको आके ज्वाइन करते हैं। हर तारीख कोई ना कोई तारीख रखती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए खुशी का बायस होते हैं और उन दिनों को हम हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि आज 6 अक्टूबर का दिन है तो जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन में केसन नेचुरल पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स की फैमिली है उसके अंदर जो है कुछ नए प्रोडक्ट्स का इजाफा हुआ है। कुछ नए प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आप डेफिनेटली जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे। क्योंकि आज तक जो भी केसन ने प्रोडक्ट बनाए हैं वो आपकी डिमांड होते हैं, वो आपकी नीड होते हैं, और ये जो नए प्रोडक्ट आज 6 अक्टूबर की तारीख में हम आप लोगों को पेश करने वाले हैं, यकीनन आप लोग जब इनके बारे में जानेंगे, जब आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा तो जाहिरी बात है कि आप झट से पैसे लेकर जनाब इन प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे। क्योंकि जनाब आपको पता है कि केसन पर लगाए जाने वाले पैसे जो होते हैं वो कभी रायगा कभी जाया नहीं होते। जी जनाब, अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर तारीख हर दिन खूबसूरत है, लेकिन वो दिन जो आपके लिए रिस्क में इजाफे के सबब बनते हैं, जाहिरी बात है कि आप उन दिनों को हमेशा अपनी तारीख में नोट करते हैं और वो दिन आम दिनों से हटकर आपकी तारीख का हिस्सा होते हैं। क्योंकि इस तारीख तक पहुंचने के लिए, इस दिन तक पहुंचने के लिए किसी भी फर्द वाहद या किसी भी कंपनी की बहुत सारी मेहनतें शामिल होती हैं, बहुत सारी रिसर्च शामिल होती है, बहुत सारी तहकीक शामिल होती है और अनथक मेहनत और स्ट्रगल शामिल होती है। तो 6 अक्टूबर हमारे लिए एक तारीखी दिन बन गया है कि जिसमें केसन नेचुरल पाकिस्तान ने एक साथ 3 नई प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे दी हैं और आपको सुपुर्द कर दी हैं। यानी कि हमारी तरफ से मुकम्मल तसल्ली होकर हमने अपने ट्रायल्स करके आप लोगों के लिए ये 3 बड़ी प्रोडक्ट आज से आप लोगों को इस्तेमाल के लिए दस्तियाब कर दी हैं। जी जनाब, कौन सी प्रोडक्ट हैं इनके हवाले से भी बात करेंगे और जरूर बात करेंगे। क्योंकि जनाब हर दिन जो हम आपके साथ आते हैं ढेर सारी डिटेल लेकर आपके सामने पेश होते हैं और वो प्रोडक्ट जो आपकी नीड है, और हमेशा हमारी जो रिसर्च की टीम है वो हमेशा इस तहकीक में जुड़ी रहती है कि हम अपने कस्टमर्स को कौन सी फार्मूला इंट्रोड्यूस कराएं, कौन सी चीज लोगों की डिमांड है या कौन सी चीज ऐसी लोगों को चाहिए है जो लोगों को जरूरत तो है लेकिन लोगों को वो चीज मिल नहीं रही, या अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, या अगर मिल रही है तो बहुत मुश्किल से मिल रही है, या अगर मिल रही है तो गैर मियारी चीज आप लोगों तक पहुंच रही है। तो केसन नेचुरल पाकिस्तान हमेशा आप लोगों के लिए मियारी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है और केसन की पहचान है जनाब मियार क्वालिटी जो है वो केसन की पहचान है। तो जनाब आज कौन सी 3 नई प्रोडक्ट्स जो है वो हमने आप लोगों को इस्तेमाल के लिए दे दी हैं, यानी कि आपके इलाकों में तकरीबन ये पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं या कल की तारीख में ये तमाम स्टेशन के ऊपर आपको बआसानी दस्तियाब होंगी।

0: तो जनाब आप लोगों के लिए और ये फॉर्मुलेशन आप सबने यूज करनी है भाई। आयली स्किन वाले हैं, ड्राई स्किन वाले हैं, टू टाइप स्किन वाले हैं, जो भी स्किन के मालिक हैं आप लोगों ने जरूर स्किन क्लियर फार्मूला केसन का जो है हमने न्यूली लॉन्च किया, इसे इस्तेमाल करना है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, इसके साथ हमने दो क्रीमें और भी लॉन्च की हैं जनाब। वो कौन सी हैं वो भी आपको साथ साथ में हम बताएंगे कि दो और कौन सी क्रीमें भी आज से हमने लॉन्च कर दी हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इनको मौका देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, माफ़रत करनी है बस। अच्छा पहले गंदी पाव ठीक है क्या, जो साढ़े पांच जमा पे वाटनी वास्ते जा रहा है ना, तो दस करें दुकान बंद करें।
0: अच्छा चलो ठीक है ठीक है, बस अंदर से तो कोशिश कर सूं कॉल्स तो नमाज का टाइम बिल्कुल अकेला आ गए इन टाइम पे, तो इंशाल्लाह जरूर कोशिश कर सूं तुम्हारे कॉल्स थोड़ा जहा 15 मिनट 10 मिनट पहले गिन सुनो कि मैं आले ठीक ठाक है सही
1: और खड़ी है बस। खाना जी तो गया से इतवार दीवार।
0: अच्छा जी ठीक है,
1: तो सामान गिने तकरीबन 5,000 रुपए का सामान गिने थे, उनको आखिरी से जो भाई आपको कोई शेयर दे रहे हैं दे रहे उन्हें आका ना, तो आपको सब फ्री दे सू 1,000 रुपए दी थे एक शेयर फ्री दे सुना उन्हें आके जो भाई नहीं है उन लोगों के वास्ते दे रहे लोग को परचून वाले गिन जाए भाई, वो 2,000 रुपए का सामान गिनते हैं तो उन्होंने एक शेयर आकर दे सो 2,000 रुपए का सामान ना के कौन गिन दे रहे ना
0: बस वो उन्होंने ही तरतीब बढ़ाई हुई है। असल सारी तरफ ऑफर नहीं, ए उन्होंने अपनी तरफ ऑफर दिखती हुई है ना, ठीक है सही, अपनी दुकानदारी वास्ते तो 2,000 रुपए तो बिल्कुल 1,000 तो पहले ही जिले अपनी कंपनी तरफ दी से तो ना, ठीक है जनाब, तो ए उन्होंने ऑफर अपनी है जेरे उन्होंने 2,000 दूते ठीक रखा हुआ है, तो वो जरूर गल अपनी पॉलिसी के मुताबिक चल सन, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा दुकानदार जेरे हर हफ्ते 5,000-6,000 का सामान गिने उक तो फेवर करनी चाहिए, तो देना चाहिए सही कुछ ना कुछ फेवर
1: वो तो देने ना वो को साथ है, लेकिन उन्होंने तू ना क्वाक जा भाई ये रहना जी भाई यार वो ही में गाल करे ना वो मैं के चलो यार ठीक है कोई गाल नहीं होगी तू समझे देने तो खैर है वो।
0: अच्छा चलो चलो ठीक है, ऐसा उन्होंने गाल कर गिनसु, लेकिन पॉलिसी उन्होंने अपनी बढ़ाई है, उन्होंने आपे बढ़ा के सब कुछ, लेकिन गाल 1,000 रुपए वाली नहीं 2,000 रुपए देते ही परफ्यूम फ्री है, लेकिन इंदी छोड़ ओ तो दुकानदार वाले रेट ते देन देन शायद तो इन वजह को आधे उसन के साथ उनकी बचत नहीं थी दी। आम बंदा जेले वेंदे है उको फुल रेट देते सामान देंदे ना, लेट्स सपोज जी हुन शैंपू है ओ तो दुकानदार वाले रेट ते देंदे उसन, लेकिन एक आम बंदा जेले वेंदे है तो ओ उनदे कोल 30-40 रुपया एक्स्ट्रा गिन देन, तो ये पंछी शिया कोई गिने तो जरूरी गल उनदा खर्चा तो निकल आंदा, इन वजह को 2,000 देते ही फ्री दे देंदे अपनी तरफों प्रोग्राम सुन दे पे सारी नवा फार्मूला स्किन क्लियर फार्मूला आ गई है, तुहाडे इलाके बहुत सारे लोग ऐसे हो सन जिन्हां दे स्किन दे मसले चेहरे दे मसले बहुत पुराने वधे हो सन ते ठीक ना थींदे पे हो सन, ठीक है सही, तो यह फार्मूला जरूर तो लोग मंग सन क्योंकि ए

0: सही मस्जिद। तो भाई लिसनर जितने सुन रहे हैं हाँ प्राइस कौन लिखे बदे ठीक है जनाब जी री लवली फेस क्रीम है और 250 रुपए दी 150 सही 250 रुपए दी ठीक है जनाब जेरी जो कोल्ड क्रीम है वो 200 रुपए दी ठीक है जनाब 200 रुपए दी ते जेरी हां ऐसा रेट बहुत नॉर्मल रखे से हर कहंदी अप्रोच दी ठीक है जनाब हर बंदा हर बंदा गिन सके
1: कोल्ड क्रीम चाहे फेस
0: लवली फेस जेरी है इन वक्त ए जरा उना दा 420 रुपए दा जा रहा ना पिए असा तो को 250 रुपए ते लेता से तुम्हारे को कोई लोग गिन वैसे तुसा इंशाल्लाह ऐसा को दर्जन दर्जन ऑर्डर करे सो आज ही में तुसा ऑर्डर भेजा ही ना तो ए दिल खोल के लोगों को देओ तो दूजा जरा सारा स्किन क्लियर फार्मूला वो तुम्हारे कल वाला के पहुंच असी जरा ऑर्डर रह गई है वो भी कल तुम आवे ठीक है तारे फरुख भाई फरुख तारे भाई
1: महीने
0: चलो बस ठीक है फोन रब्ता करे सो इंशाल्लाह कल फर्दर तौर बस ठीक है बस वो लड़के ने मेरे को मैसेज कर छोड़ा है लेकिन बारह तो कॉल सारा स्टॉक भिजवा रहे ठीक है जनाब ठीक है जी बहुत मेहरबानी जनाब शुक्रिया अच्छा जनाब ये कीमतें ये एक दुकानदार भाई हैं और इनके पास आज हमारा सामान पहुंचा है जिसमें लवली क्रीम गई है साथ में कोल्ड क्रीम गई है और इसमें इनको स्किन क्लियर फार्मूला भी गया है तो कहते हैं कि मैंने खुद चेक किए हैं और हर चीज इनको बेहतर लगी। दुकानदार फौरन चीज को चेक करता होता है क्योंकि उसे हर कंपनी का पता होता है कि यार अगर ये डे क्रीम है लवली तो फिर लवली किस तरह है ये किस तरीके से है तो वो क्या कह रहे हैं बहुत चलेगी। कोल्ड क्रीम में क्या कह रहे थे भाई कि ये बहुत दोनों चीजें बहुत चलेंगी। वजह क्या है कि हमने वही मयार रखा है दोनों का ठीक है जनाब लेकिन कीमतें बहुत कम रखी है। कोल्ड क्रीम जो है सिर्फ 200 रुपए की आपको मिलेगी और जो लवली क्रीम है वो 250 रुपए की आपको मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम एमबी साहब।
2: वालेकुम सलाम सर जी के हाल आज तो साहब डबल शो सुन दे पाए इन एफएम पे सब रिकॉर्डिंग सुन दे पाए 29 वाली साली इन वो जे ना फेसबुक पे सब लाइव सुन लेता
0: हां बस फेसबुक का लाइव आज तुम्हारे पास नेट का मसला हो सी जी वजह को मेरे ख्याल वो प्ले नहीं कर सके रिकॉर्डिंग चला दी थी ने किवे हाल है सही ठीक ठाक है तुसा
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जी
0: आज खुशी दा दी है सारे वास्ते क्योंकि केसन दे त्रै नवे प्रोडक्ट आ गए हैं तो जाहिर ही गाल है तुसे सारी फैमिली दा हिस्सा वे केसन फैमिली दा तो कोई खुशी थई हो सी जी
2: माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो सर जी
0: बहुत मेहरबानी है। मैं को लगता है कि तो आदे जे तुस उम्र ते गए ते सारे वास्ते दुनिया कीते आवे ना ए उंदा रिजल्ट ही वे पता होवे तो को
2: सर तो साहब की खुशकिस्मत है सर सच्ची गाल क्योंकि थोड़ी आशा जाना ना सर प्रोडक्ट मक्के मदीना तक पहुंचा दी है ना तो बस तुसा रखी रखी थी इंशाल्लाह
0: बिल्कुल बिल्कुल सर तो सर आई थिंक ये पहला मौका है सारा कि ऐसा त्रै प्रोडक्ट इकट्ठे यानी कि फेयर एंड लवली फार्मूला कोल्ड क्रीम ते प्लस ए स्किन क्लियर क्रीम इकट्ठे एक दिन दे विच त्रै क्रीमा गिन के आ गए तुम्हारी तरफ सर प्रोग्राम रखे इन त्रै प्रोडक्ट की लॉन्चिंग ठीक है सही तो इंशाल्लाह आगाह करे सो अपने अजीजा को जेरे सारे तक पहुंच सकते हैं ते जेरे सारो इजीली आ भी सकते हैं लोग ना तो इंशाल्लाह उन्हें को आगाह करे सो तो केक कटिंग का सरमनी करनी है थोड़ा इंदी लॉन्चिंग का प्रोग्राम ही है पिया क्योंकि पहले ऐसा ही में करें जैसे कि लॉन्चिंग पहले घर खड़ दिया से लोग बात ओके तीन दिन गुलें दे बदे होने तो इन पास तरीका कार है कि आज जी में तुम्हारे कल पूरे पहाड़ पूरी चीज प्रोडक्ट पहुंच वैसे आज टाक पहुंच गए डेरे च पहुंच गए तो त्रै दिन जी में हर जाते मुकम्मल तीसरी अवेलेबिलिटी बात लॉन्चिंग ऑफिशियली सौता करे सू ताकि लोग जेले दुकाना तो वजन तो सब शे मिले अवेलेबल मिले
2: ठीक है जी माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जरूर हाजिर
0: जरूर सही तुसा को जरूर इनवाइट करे सो बहुत मेहरबानी एमबी साहब सनल मौजूद है थैंक यू जनाब बहुत शुक्रिया। अच्छा तो जनाब ये तीन तरह की क्रीमें जो है वो हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी हैं। नंबर वन कौन सी क्रीम है जनाब स्किन क्लियर फार्मूला क्रीम ठीक है जनाब। नंबर दो के ऊपर कौन सी हमारी डे टाइम क्रीम ठीक

कि जनाब डे टाइम क्रीम जो है, यानी कि ये बेसिकली फेयरनेस फार्मूला है, फेयरनेस फार्मूला है, और इसको डिटेल में बताएंगे। बड़े फायदे हैं जनाब डे टाइम क्रीम के, बड़े फायदे। जो दिन की क्रीम होती है ना, वो इतनी जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप सोच नहीं सकते। कि जिस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि रात का खाना जरूरी है और दिन का खाना जरूरी है ना, उसी तरीके से अगर आप रात की क्रीम अपने चेहरे को इस्तेमाल करवाते हैं तो दिन की क्रीम भी जरूर इस्तेमाल कराइए, क्योंकि दिन के वक्त आपकी स्किन को और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ये जो डे टाइम क्रीम हमने आप लोगों के लिए लॉन्च की है जनाब, जिसका नाम है लवली फेस, इसका नाम है जनाब डे टाइम।

0: जी जनाब, ग्लो भी आपको मिलेगा, फ्रेशनेस भी मिलेगी। जो डे टाइम क्रीम होती है ना, उसके दो बड़े कमाल होते हैं। एक तो दिन की जब आप क्रीम लगाते हैं तो आपके जो छोटे मोटे जो हल्के होते हैं आंखों के गिर्द या फिर दाग धब्बे होते हैं, वो उसी डे टाइम क्रीम से बिल्कुल छुप जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है जनाब। दूसरी बात ये है कि आपका चेहरा फ्रेश नजर आएगा और ग्लो फ्रेश क्या कहते हैं, फ्रेशनेस जो है वो आपके चेहरे के ऊपर नमूदार होगी, नजर आएगी। तो लवली फेस हमारी डे टाइम क्रीम है जनाब, ये भी आज के दिन में हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है। और टांक में ये दोनों क्रीमें पहुंच चुकी हैं, बल्कि तीनों क्रीमें। तो आज कौन सी तीन क्रीमें केसन ने लॉन्च की है? नंबर वन स्किन क्लियर फार्मूला, जिसकी कीमत 450 रुपए है। दूसरी डे टाइम क्रीम जिसका नाम है लवली फेस, इसकी कीमत 250 रुपए है। और इसके अलावा जो कोल्ड क्रीम, यानी कि आने वाले जो दिन है, क्योंकि पता नहीं चलना अचानक से ठंडे हवाएं चलनी है और आपके हाथ पांव चेहरा खुश्क होना शुरू हो जाना है, तो आपके पास ये क्रीम पहले से मौजूद होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन खराब ना हो सके। जो हमारी कोल्ड क्रीम है केसन की, जो कि सर्दियों के लिए है, वो 200 रुपए हमने इसकी कीमत रखी है। तो आपकी जेब का ख्याल रखते हुए हमने ये तीन फार्मूले आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए हैं डेरा टांक और पहाड़पुर में। ठीक है जनाब, आपको इजीली आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। जहां जहां आप हमारे प्रोडक्ट हासिल करते हैं वहां पर जाएंगे और उनसे तलब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। जफराबाद के अंदर हाजी जरी जनरल स्टोर है जनाब, यहाँ पर जाएंगे तो इनके पास ये तीनों क्रीमें, स्किन क्लियर फार्मूला, डे टाइम क्रीम और कोल्ड क्रीम, ये तीनों क्रीमें पहुंच चुकी हैं जनाब। आप जाइए, खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों में शामिल हो जाइए जिन लोगों में सोनिया आप ही शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: भाई,
1: बहुत बहुत मुबारक हो।
0: खैर, मुबारक आप लोगों को भी, बहुत बहुत मुबारक हो। आप सिर्फ मेरी कंपनी तो नहीं है, आपकी भी कंपनी है ना?
1: बिल्कुल, हमारी कंपनी में बहुत खुशी भी है।
0: खुशी हुई है ना कि हमने आपको कुछ चीजें जो मिसिंग थी या आप किसी और कंपनी के इस्तेमाल करते भी थे तो अब आपको मुनासिब कीमत के साथ केसन के अंदर भी वो चीजें मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बिल्कुल, जो मोहब्बत से लगाया था अब उसका फल है तो अब ज्यादा खुशी होती है ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की तावन, आप लोगों की सपोर्ट और अल्लाह ताला का सारा फजल ही है।
1: और तनाव को भी बहुत मतलब फिर कॉल नहीं मिली और दो दिन सिग्नल भी नहीं थे ना।
0: हाँ सिग्नल नहीं थे बिल्कुल, ऐसे
1: उनके एंगेजमेंट थी ना, बहुत खुशी मिला उनको, बहुत खुशी, ज्यादा खुशियाँ।
0: आमीन आमीन। अब खुद आप चक्कर लगता रहते तो आप बिल मुशाफा भी जो है उनको मुबारक दे दीजिएगा। क्योंकि अभी तो आपने आना है, क्योंकि आपकी मुझे याद है कि आपने कहा था स्किन क्लियर का इंतजार है, स्किन क्लियर क्रीम का, तो वो भी आप इस्तेमाल करेंगे। सर्दियां आने वाली हैं तो कोल्ड क्रीम भी और डे टाइम क्रीम। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी हमारी आंटियां हैं ना, आंटियां वो तो जरूर लगाए, जिनको भी झुरिया हो चुकी हैं या होने वाली
1: है। इनके साथ साबुन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इनसे अक्सर आप शॉप पे नहीं होते ना।
0: अच्छा, तो नहीं, इनके साथ व्हाइटनिंग का कोई भी आप जो है ना यूज कर सकते हैं, मिल्की यूज करें, ठीक है ना।
1: राइस तो वो हमारे घर में चलता है, मिल्की के अलावा तो कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता।
0: बस उसमें आप देखें ना, उसमें हमारा राइस है, उसको कभी राइस को ट्राई कर लें। ग्लूटा बहुत ज्यादा इस वक्त इन है, जफरान इस वक्त तीन साबुन जो है ना हमारे, यकीन जानिए हर दुकान की जरूरत है, जाफरानी मिल्की हर घर की। हर दुकानदार कह रहा होता है ग्लूटा 2 दर्जन भेज दो, जफरानी 2 दर्जन, मिल्की 3 दर्जन, यानी ये तीन साबुन तो हर किसी के इस्तेमाल में है और हर कोई खरीद रहा है। तो आप इनमें से कोई भी साबुन इस्तेमाल करें और हमारी क्रीम्स का इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब। आमीन आमीन सुमा आमीन। ओके जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी। हमारे साथ मौजूद थी सोनिया अभी आ

जी जनाब, डे टाइम क्रीम जो है, आज के दिन में आप लोगों को तीन नई क्रीमें मिल गई हैं। क्रीमों का दिन है जनाब। और जी जनाब, और अभी हम लिंक हुए हैं, दो मिनट जो है अभी हुए हैं, 48 मिनट पर रेडियो पैगाम जो है हमें लिंक कर बैठा है। आखिरी लम्हों में आ गए हैं आप लोगों के पास। तो भाई पाठपुर वाले रिकॉर्डिंग सुन रहे थे अभी हमारी, और नेट का इशू होने की वजह से हम तो जारी थे, ये जारी नहीं थे। आज के दिन में आप लोगों को बता दें कि जनाब हमने तीन नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, और कौन कौन सी प्रोडक्ट आज के दिन में हमने लॉन्च किए आप लोगों के लिए, 6 अक्टूबर का दिन हमारे लिए एक तारीखी हैसियत रखेगा, क्योंकि जनाब ये वाहिद दिन है कि जिसमें तीन प्रोडक्ट हमने एक साथ लॉन्च किए हैं। नंबर वन स्किन क्लियर फार्मूला, जो कि सीरम फार्मूला है, स्किन क्लियर फार्मूला। दूसरी हमारी डे टाइम क्रीम जिसका नाम है लवली फेस, ये वाली क्रीम।

तीसरा ग्लो और फ्रेशनेस एक साथ आपको मिलेगी केसन की डे टाइम क्रीम लवली फेस के नाम से, जिसकी कीमत है 250 रुपए जनाब। और जब आप ये क्रीम खरीदेंगे भाई, ये आज मैंने पूरा आधा घंटा बात की है स्किन क्लियर के ऊपर, ये कोई मामूली सी क्रीम नहीं है कि जिसके ऊपर मैं 5-6 मिनट बात करूं, ये भी आधा घंटा बात करने वाली प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है जनाब। आज हमने दिया 3 क्रीमें एक साथ लॉन्च की हैं, आज हमने तफसीलन बात की है स्किन क्लियर फार्मूला क्रीम के ऊपर जो कि सीरम बेस्ड है, और हम कहते हैं कि आपके जितने भी बड़े से बड़े मसले, और इसके अलावा मसलों से सबसे बड़ा मसला क्रीम का जो होता है कि बहुत सारे लोग जब क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 दिन बाद उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इस स्किन क्लियर फार्मूला से आपकी स्किन क्लियर होगी, खराब नहीं होगी, व्हाइटनिंग के चक्कर में आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स नहीं आएंगे, व्हाइटनिंग के चक्कर में आपके चेहरे के ऊपर दाने नहीं आएंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन दिन ब दिन क्लियर होगी और हर रोज आपको खूबसूरती की तरफ खींचता चला जाएगा।

जी सब केसन लवली फेस ग्लो और फ्रेशनेस एक साथ हर दिन आपका खूबसूरत बनेगा जब आप हर सुबह चेहरा धोकर अपने चेहरे के ऊपर दिन वाली क्रीम यानी के लवली फेस को अप्लाई करेंगे लगाएंगे और फिर आप अपने चेहरे को अपनी खूबसूरती को अपने गोरेपन को अपनी क्लैरिटी को अपनी आंखों से देखेंगे। रात की क्रीम है जनाब स्किन क्लियर फार्मूला और दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे केसन लवली फेस डे टाइम क्रीम।

जी जनाब, डे टाइम क्रीम भी आज हमने लॉन्च कर दी आप लोगों के लिए। 250 रुपए इसकी कीमत है, जार के अंदर ये आपको मिलेगी और अच्छी खासी क्वांटिटी में। वो मिकदार जो आपको 420 रुपए की मिलती है एक कंपनी की, एक कंपनी है जिसकी डे टाइम क्रीम है, ठीक है जनाब, फेयरनेस क्रीम है, उनका जार 420 रुपए का है और उतनी ही मिकदार हम आपको 250 रुपए में देंगे, दे रहे हैं। पहाड़पुर वाले, डेरस मिर खान वाले और टांक वाले, मैं आपको एक बात कहूंगा कि हमारी ये डे टाइम क्रीम आप सब में, किसी ने भी इसको नहीं छोड़ना, किसी ने भी इसको नहीं छोड़ना है और इसको जरूर ट्राई करना है। आप महंगे बड़े बड़े खर्चे करना छोड़ देंगे अगर आपने इस क्रीम को इस्तेमाल कर लिया। ये डे टाइम के लिए है और दिन के वक्त लगाएंगे, चेहरे के ऊपर ग्लो आएगा, फ्रेशनेस आएगी और रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती जाएगी। लेकिन नाइट टाइम के लिए आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किए है ये प्रोडक्ट के सन स्किन क्लियर फार्मूला। अननोन टांग से हमारे साथ हैं और कहते हैं कि सलाम सर, शो इज वेरी नाइस, कल भी आपने मेरा मैसेज शामिल नहीं किया, आई एम योर रेगुलर लिसनर अननोन फ्रॉम टांग। अच्छा, कल हमारी रिकॉर्डिंग थी तो इस वजह से जो है वो आपका नहीं हो सका, ठीक है जी। अरूबा आप ही, हानिया, सोनी, अनम, मारिया को जनाब फातिमा जो है सलाम कह रही हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। नुमान, अच्छा नुमान नहीं है जी, खलील ताबे जवान है आपके सामने, ठीक है जनाब, कैसे हो खलील भाई। हमजा बलोच हूँ कुराई से, शो नाइस है, कल हमारी तरफ सर्विस का मसला था जिसकी वजह से हम प्रोग्राम में शिरकत ना कर सके और के यू आप ही को मेरी तरफ से पैकेज, हाँ के यू हिना गुल को विन किया इस दफा महीने का पैकेज, मुबारक हो। और आप ही से ये अपील है कि हमारे लिए दुआ करें कि अगला नंबर हमारा आए। पता उन्होंने अपने लिए दुआ की थी या नहीं की थी, ये जनाब टांग के अंदर जो पैकेज लगा हुआ है कौन सा पैकेज है। अच्छा जी, स्वीट दुरे अदन हमारे साथ हैं, द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वाले उस्ताद जी, वेलकम टू द मेरा अपना फेवरेट शो विद आरजे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड हमेशा की तरह ये दुआ तेरी कामयाबियों पे बरसती रहे, खुदा की रहमत, केसन तेरे कमालात की आवाज फिजाओं में सदा गूंजती रहे, आमीन। स्किन में निखार खूबसूरती रहे हमेशा बरकरार, स्किन क्लियर फार्मूला आया है केसन का एक और शाहकार, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस बोल रही हैं जनाब हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर जिसका केसन स्किन क्लियर फार्मूला।

जी जनाब, टांग के अंदर भाई ये प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। ब्लेसिंग है टांग। सबसे पहले हमारी ये प्रोडक्ट जो शुरुआत हुई है ना, वो अगर सबसे पहले दुकानों के ऊपर हमारे ये तीन नए प्रोडक्ट गए हैं तो टांग में गए हैं। सो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ये जो हमने शुरुआत की है टांग से इन नए प्रोडक्ट्स की, यानी कि आज फर्स्ट डे था हमारे इन तीन प्रोडक्ट्स का, और सबसे पहले जो सप्लाई पहुंची है वो टांग में। तो टांग वाले आप लोग पहुंचे जनाब मंसूर जनरल स्टोर सदर प्लाजा में, और हमारी ये तीनों किस्म की क्रीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। एक नाइट क्रीम है जिसका नाम है केसन स्किन क्लियर फार्मूला सीरम वाली क्रीम, ठीक है जनाब। दूसरी डे टाइम क्रीम है जो कि है लवली फेस के नाम से, और तीसरी हमारी कोल्ड क्रीम है, ठीक है जनाब, कोल्ड क्रीम, जिसके ऊपर हमें जो है आज एक दुकानदार ने आके कह दिया है अभी लाइव कॉल के दौरान कि भाई ये दो क्रीमें आपकी बहुत चलनी है। क्यों उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ये बात कही है, क्योंकि कोल्ड क्रीम बहुत ज्यादा चलती है और डेट जो लवली टाइप होती है वो बहुत ज्यादा चलती है, तो इस वजह से भाई कह रहे थे कि भाई ये क्रीमें बहुत ज्यादा चलनी है क्योंकि मिकदार में ज्यादा है और प्राइस में कम है। तो एक दफा फिर से मैं आपको हमारी तीन नई क्रीमें जो इस वक्त आप लोगों के पास केसन की पहुंची हैं, उनकी कीमतें और उनके असरात आपको बता दूं। एक हमारी स्किन क्लियर क्रीम है जनाब,

0: कि ये इस्तेमाल करना खाना कैसा है हकीम साहब?
1: बहुत जबरदस्त है, ठीक है, मेरी अपनी फेवरेट डिश है, लेकिन नमकीन चावल।
0: नमकीन या मीठे हकीम साहब?
1: नमकीन।
0: अच्छा, नमकीन।
1: नमकीन चावल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: ऐसी बात है। हाँ,
1: बाकी ये है कि आप मीठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावलों की ज्यादती जो है,
0: ऐसी बात है, हाँ,
1: वो ठीक नहीं है ज्यादा।
0: ठीक है,
1: आप हफ्ते में एक आध दफा बना सकते हैं अपनी मेन्यू में अगर रखें तो चावल। और दूसरा यह है कि इसका नुकसान तो कम से कम कोई नहीं है।
0: अच्छा, इसका नुकसान नहीं है कोई।
1: लाइट सी खुराक है, लेकिन जब हम इसको और ज्यादा मसाले डाल के और उसको बिरयानी की तरफ ले जाते हैं या मुख्तलिफ डिशेज, फिर थोड़ा सा यह है कि वो हमारे मैदे पे बोझ बनाते हैं, बाद तबीयत में वो पैदा करते हैं। लेकिन आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी ज्यादती जो है वो सही नहीं है।
0: ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि आजकल हर नौजवान इस मसले में मुब्तला है, यानी कि डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन दूर करने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए हमें?
1: इस पे पीछे हमारा प्रोग्राम रहा है,
0: तफसीलन
1: स्ट्रेस का,
0: टेंशन, डिप्रेशन के बारे में,
1: टेंशन का। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन है, हमें कम से कम उस पे नजर मारनी होती है।
0: ऐसी बात
1: कि हमारे जो मामलात हैं वो कैसे हैं, किस तरह हैं, उसमें आपकी इबादत भी आ जाती है, आपकी खुराक भी आ जाती है, आपका रहन सहन भी आ जाता है, आपका लोगों से मिलना जुलना भी आ जाता है।
0: ठीक है,
1: तो जब आप मुस्बत तरीका अपनाते हैं तो फिर आप कामयाब भी रहते हैं।
0: चले, ठीक है हकीम साहब, नशे के बारे में अगर हम बात करें, नशा आपको पता है कि ज्यादा हो गया आजकल।
1: बिल्कुल है, बिल्कुल,
0: चाहे वो जिस किस्म को भी नशा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो ये बताइएगा कि हकीम साहब क्या नशे का इलाज आपके पास है?
1: देखिए, बात ऐसी हैं चीजें कि जिनके लिए दवाखाना भी अभी
0: ठीक है
1: उस तरह पेशेंट को डील नहीं करता। हाँ, हमें मशवरा दिया जा सकता है।
0: ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपके पास ले आए हकीम साहब नशे का, यानी कि एक तो बड़ा हाई लेवल का चला जाता है ना, अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या नस्वार की आदत है, तो क्या ये छोड़ सकती है?
1: हाँ, बिल्कुल उसके लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मुतासरा शख्स है उसकी कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद अपने आप में एतमाद पैदा नहीं करेगा और अपने आप में छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
0: ठीक है, हाँ,
1: तो फिर कोई मेडिसिन भी वहां काम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि वो उसको यकदम ना छोड़े, और यकदम छोड़ी भी नहीं जाती, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं रफ्तार रफ्तार रफ्तार, तो आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं।
0: ठीक है हकीम साहब, एक और सवाल है, ये बताइएगा कि सिगरेट पीने से क्या फालिज हो सकता है?
1: सिगरेट पीने से
0: काफी बार सुना है हकीम साहब।
1: देखिए, बाज दफा होता है कि जिस्म में आपके तब्दीलियां जरूर आती हैं,
0: ऐसी बात है,
1: और कुछ बॉडी में ऐसी तब्दीलियां तो वो उस तरफ आपको ले जा सकती हैं।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: अच्छा,
1: लेकिन कोशिश करें कि आप सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें, वरना और कुछ होना हो आप दमे के जरूर मरीज बन जाते हैं।
0: ये तो लाजमी है कि
1: और फिर आप किसी काम के भी काबिल नहीं रहते, यानी आपके सीने में वो ताकत
0: ऐसी
1: वो
0: बात है, नहीं, वो नहीं, नहीं रहती, बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरी बहन?
2: मैं गांव से बात कर रही हूँ। ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत हाई रहता है ना।
0: ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है
2: जी, हाई रहता है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
0: हाँ जी बिल्कुल, आपको हकीम साहब बताएंगे। ये बताइए, मशवरा आपको है, आपके घर में किसी को है ये मशवरा, ये मसला किसको है? हेलो, तो जी इन कॉल तो ड्रॉप हो चुकी है जी। हकीम साहब, इनको खुद मसला है ब्लड प्रेशर का या घर में किसी को मसला है, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
1: जिसको भी है, पहले तो कोशिश ये करें कि अपने जो खुराक है, अपने जो मामलात हैं, जरा और
0: है?
1: अपने जहन को थोड़ा आजाद करें, बेफिक्र सोचे वगैरह ऐसी चीजों से बचें।
0: ठीक हो गया।
1: दूसरा ये हो गया कि अगर आप उसका प्रॉपर इलाज कराते हैं तो वो सबसे बेहतर है।
0: ऐसी बात है।
1: और अगर आप चाहते हैं कि मैं वक्ती तौर पर किसी नुस्खे से या किसी टोटके से या किसी जड़ी बूटी से इसको कंट्रोल करता हूँ, तो वो भी मुमकिन है। आप पंसारियों से छोटी चंदन ले सकते हैं, उसको लाके आप पीस के और
0: ठीक है,
1: छोटे चम्मच का आप चौथा हिस्सा ले लें, जरा कड़वा रखती है जायका, तो उसमें आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ,
0: ठीक है,
1: तो फिर इंश

और देने लवा शहीद अली शहीद से वही सी जड़ में कलक नकड़े शलो सात में सार वो नकड़ो जड़ में कलक नकड़े शलो सात में सार वो नकड़ो चरत बजुन जमाद सबर मिनी बाहर वो नकड़ो जड़ में कलक नकड़े शलो सात में सार वो नकड़ो जड़ जड़ में कलक नकड़े ले शो सात में सार वो नकड़ो चरत बजुन जमाद सबर मिनी कार वो नकड़ो द वक्त न उड़ांदे उड़ांदे स्तर के बदले शोले द वक्त न उड़ांदे उड़ांदे स्तर के बदले शोले जमा व दित दे हम यार इंतजार वो नकड़ो द वक्त न उड़ांदे उड़ांदे स्तर के बदले शोले जमा व दित दे हम यार इंतजार वो नकड़ो और जमा यारान बवी जमा रुगी रस्ते वहली जमा यारान बवी जमा रोगे रस्ते वहली कनी नुमा खपल दुश्मन तो हम हजारो नको शहीद अली शहीद से बात से जमा यारान बवी जमा रोगे रस्ते वहली ऐ जमा यारान बवी जमा रोगे रस्ते वहली कनी नुमा खपल दुश्मन तो हम हजारो नको

मुश्किल से पहुंचे हैं स्टूडियो तक। डेरा मन्नत जी, हाँ बिल्कुल, हाँ से पुनः शेयर प्रोग्राम शेयर सुख जा और वह से वहाँ पर डेरा मन्नत खोरे किसी से और वह हाँ मनन और विषय बोले कि मैं तो 88.4 टैंक एंड मनीजर नाजवान हाउ आर यू एंड आई एम लिसनर एफएम रेडियो टैंक जंजीब हांडी हाँ से कैसे हो बाय ये सॉन्ग तो प्ले करो जमा पजड़ो जुड़ अभी ला रहे यार मैं खैस्त सरगी लरी खुमार है डेरा मन्नत जी जंजीब कोशिश कोशा चिदा का गाना था जरूर प्ले का सुबह बाहर अल बार बार कोशिश कोशा शादु के नाम से वैसे भाई जाना लश हो तो ओके खाने वकार डेरा मन्नत ना खानिया बंद लाफ थैंक्स यू जहान मन्नत से